0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते

0: पांडे जी क्या तू साला लग पाए हो यार।
1: एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है
0: और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: हम थोड़े मोटे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू पूर्वी सौखा अति सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
4: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अति बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
3: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
5: दिल तो हर किसी के पास होता है लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
6: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: रेडियो हाँ जी 1674
1: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी स्पेशल ऑफर विच पाओ। 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
2: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुन तमाल।
3: नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

ग्रोवर्स, वी ग्रोवर्स, हाँ जी हाँ जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो सुनते रहो, हाँ जी AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: JBCO Films लेके आए ने एक्शन, इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट। पंजाबी फीचर फिल्म शेरा।
3: 5 साल बाद मुड़िया शेरे, ते मुड़िया भी केड़े हाथ
4: ता। स्टारिंग परमीश वर्मा, सोनल चौहान, योगराज सिंह, मानव विज अते होर भी उगे कलाकार।
5: मैं उठों भी मुड़ के जितों कोई नहीं मुड़ के होगा।
2: Written and directed by Savio Sandhu, produced by Anmol Sahni.
4: हुन वेखना ना भुल्लियो 15 मई तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
6: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे, लव यू ऑल, भावना को समझो।
7: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हाँ जी पर। रेडियो हाँ जी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हाँ जी सुनने होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, अभी ना कहना ना जी ना जी।
8: Still bangles.

दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हिटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारों नीनो ज़ूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ, 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
1: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुन तमाल। नीरू बाजवा निर्मल ऋषि जी की मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
2: हाय हेलो, दिस इज अली असगर हियर ऑन रेडियो हाजी 1674 AM। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए।

0: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
1: $295 डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक। हुणे डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
3: सत श्री अकाल शुभ बादशाह, तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: थी नीचे थी आके पक्का भी हो गया। की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोड़े नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: रेडियो। हाँ जी 1674।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
1: सब कुछ हुन दो लोकेशन से मिलेंगे।
2: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur, Commonwealth champion, gold medalist. सुनते रहिए रेडियो। हां जी,
5: बल्ले बल्ले बल्ले
4: बल्ले बल्ले बल्ले।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: JBCO Films लेके आए ने एक्शन, इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट। पंजाबी फीचर फिल्म शेरा।
3: 5 साल बाद मुड़िया शेरे, ते मुड़िया भी केड़े हाथ
4: ता। स्टारिंग परमीश वर्मा, सोनल चौहान, योगराज सिंह, मानव विज अते होर भी उगे कलाकार।
5: मैं उत्थों भी मुड़ गया जिथों कोई नहीं मुड़ के होगा।
2: Written and directed by Savio Sandhu, produced by Anmol Sahni।
4: हुन वेखना ना भुल्यो 15 मई तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच शेरा।
6: ਫੁਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

0: imagination is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार? एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना?
3: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
4: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ, 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक, हमें डायल करो 0406 966 668 और विजिट shipglobal.au।

0: जी क्या तू साला लक पाए हो यार,
1: एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरे दोस्त छुड़ाने चले आए
0: और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: JBCO Films लेके आए ने एक्शन इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट पंजाबी फीचर फिल्म शेरा।
4: 5 साल बाद मुड़िया शेरे ते मुड़िया भी केड़े हाथ ताज।
5: स्टारिंग परमीश वर्मा, सोनल चौहान, योगराज सिंह, मानव विज अते होर भी उगे कलाकार।
6: मैं उत्थों भी मुड़ के जत्थों कोई नहीं मुड़ के होगा।
3: रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सैवियो संधू, प्रोड्यूस बाय अनमोल साहनी।
5: हुन वेखना ना भुल्यो 15 मई तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच शेरा।
7: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
8: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
7: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
8: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
7: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
8: आहो जी आहो,
7: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
9: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
10: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
9: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
10: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
7: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310, डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक। हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
11: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुन धमाल। नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
3: JBCO Films लेके आए ने एक्शन इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट पंजाबी फीचर फिल्म शेरा।
4: 5 साल बाद मुड़िया शेरे ते मुड़िया भी केड़े हाथ ताज।
5: स्टारिंग परमीश वर्मा, सोनल चौहान, योगराज सिंह, मानव विज अते होर भी उगे कलाकार।
6: मैं उत्थों भी मुड़ के जत्थों कोई नहीं मुड़ के होगा।
3: रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सैवियो संधू, प्रोड्यूस बाय अनमोल साहनी।
5: हुन वेखना ना भुल्यो 15 मई तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच शेरा।
12: ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਧੁੱਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ।
13: ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਧੁੱਪ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਆ।
12: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ,
13: ਧੁੰਦ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਸਸਤੀ ਧੁੰਦ ਵੀ ਪੈਂਦੀ
12: ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਚ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਬਾਈ। ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 4 ਸਫ਼ੇਦੇ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਡੇਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰੋ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਬੀਜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਲਏ ਆ, ਹੁਣ ਉਧਾਰਨ ਤਾਂ ਚੱਜ ਦੀ ਦੇ ਲਿਆ ਕਰ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ

0: एक गोल का और दिए फलकारी।
1: बराबर
2: गाया अगले ने
1: ਨਾਲੇ ਸੌਖੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਇਥੋਂ
2: ਸਹੀ ਆ
1: ਤਵਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਨੇ ਰਹੋ
0: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਵਨੀ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ
0: ਠੀਕ ਹੈ
1: ਅੱਜ ਪਗਾਟਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਜੇ
0: ਪਗਾਟਾ ਜਿੱਤੇ
1: ਅੱਛਾ ਪਗਾਟਾ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਕਿ ਐਸ਼ਲੀ ਨੇ
2: सरदार
1: जी मेनू पता लगा तुसीं धक्के नाल ही आए हो धक्के नाल ही आए जी ना केड़ी दीदी दी वारी पहला आई ही दसो सब तो छोटा पहला फिर उस तो वड्डा ते फिर सब तो वड्डा ए ते चल ठीक है ते की सुनाओगे सरदार जी
0: एक
1: रिडल ओके पर गले च सेल नहीं हुंदी
0: ते बेला दंद टुटा होया
1: अच्छा दंद टुट गया वा ओहो लो ताड़ा भी फिर पेस्ट दा खर्चा बच गया जी कोटी स्वेटर जापदा जेड़ा तांत करके पाई दा ना हाई नेक
2: फिर गर्मी वाली टी शर्ट भी तो कही सकते
1: नहीं पर गला हुंदा ना हां पर ओदी हुंदी आ हां
2: गला
1: हां टी शर्ट
0: नहीं
1: हां ओदा गला हुंदा वा पर ओदा सिर नहीं हुंदा
0: सिर
1: नहीं हुंदा यार गले
2: कते आना ना करे तुहाडे वर्गा हुंदा जिवें उल्लू
0: हैं पीण वाली चीज
1: पीण वाली पानी दी बोतल
0: यस
1: ओह वाह
2: कई कई बातें कॉमन सेंस की होती हैं
1: कई तो तीर लग ही जाते निशाने ते है आ ते बड़ा वधिया हो गया ते वेले सिर ही बुझा गया है वीर जी सरदार साहब हुण किहदी वारी है सरदार जी हां जी
0: सत्श्री अकाल अंकल जी ते अंकल जी
2: सत श्री अकाल क्या चाल
0: मेरा ठीक है तादा की हाल है
1: ओ साडा भी ठीक है ठंड ते नहीं लगदी
0: लगदी
1: लगदी फिर आज छुट्टी कर लिए
0: नहीं
1: क्यों
0: मैं स्कूल ले जाता मेरी अटेंडेंस फिर 96% हो जाओगी
1: ओ फिर अपन तो पकड़ दिए
0: हाँ जी
1: चलो फिर तो पकड़ दिए अपन तो फिर तो ही तो पे स्कूल चल जाओ
0: और ही निकली हुई
1: निकल दी है अच्छा
0: ए मैं सुरिया नु हैप्पी बर्थडे करना
1: ओके करो
0: Happy birthday to you.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: JBCO Films leke aaye action, emotion ate full on entertainment. Punjabi feature film Shera.
1: 5 saal baad mudiyan Shera, te mudiyan vi kede haath ch.
2: Starring Parmesh Verma, Sonal Chauhan, Yograj Singh, Manav Vij ate hor vi ugge kalakar.
3: Main utthon vi mud gaya.
0: Written and directed by Savio Sandhu. Produced by Anmol Sahni.
2: Hun vekhna na bhullyo 15 Mai ton tuhade nedle cinema ghara vich.
4: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
5: और जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
5: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।
6: रेडियो हाँ जी 1674।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: हांजी हांजी ओए हांजी हांजी
3: हांजी रेडियो।
4: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
5: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो।
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
5: आहो जी आहो
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवरस्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
6: रेडियो हांजी 1674 समा हो चुका खबरां ते झात मारन दा। अज 13 तरीक है मई का महीना अज बुधवार का दिन। वो वेखदे आं कीड़ियां ने खास खबरां। सब तो पहला अंतरराष्ट्रीय खबरां तो करदे आं शुरुआत। सब तो पहली खबर अमरीका तो आ रही है जिथे हुण चल रही लड़ाई दे दरम्यान अमरीका दे उत्ते भी असर पैना शुरू हो चुका सी। उत्थे हुण तेल दीआं कीमतां इस टाइम दे उत्ते अमरीका दे लोकां नूं वी तंग परेशान करन लग पईआं ने। इस नूं ध्यान दे विच रखदिआं अमरीका दे विच पेट्रोल तों फैडरल टैक्स हटाउण दी तैयारी दे विच है शायद ट्रंप सरकार। हालांकि इह फैसला सिर्फ ते सिर्फ ट्रंप दे हत्थां दे विच नहीं आ। वेखण वाली चीज़ रहेगी कि इनू किदां ते किवें ते किहड़ी हद तक लागू किया जाता। पर ईरान दे नाल जंग अमरीका नूं भी महंगी पई है ये चीज़ तां जरूर प्रतख वेखी जा सकती है। अमरीकियां नूं राहत देण दे लई पेट्रोल दे उत्ते लगी जो फैडरल दे वल्लों टैक्स हुंदी है उहनूं हटाउण दीआं तैयारियां इस टाइम ट्रंप कर रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति का यह फैसला जिहड़ा वा वह अपने तौर दे उत्ते लागू ना करके उहनां नूं संसद जाने के कांग्रेस की मंजूरी जिहड़ी आ उह लैणी लाजमी आ। दोवां पार्टियां दे आगू जेकर रोज़मर्रा दे कम्मां दे लई वाहनां दे उत्ते निर्भर आम लोकां ते कारोबारियां नूं राहत दिवाउण दे लई टैक्स हटाउण दी मंग कर रहे ने। सो अजिहे दे विच हुण ये जानि कि ट्रिपल ए मोटर क्लब के अनुसार सोमवार के दिन पेट्रोल की औसत कीमत जिहड़ी आ उह $4.52 अमरीकी डॉलर प्रति गैलन दे उत्ते सी। जंग शुरू होने तो पहला यही कीमत जिहड़ी आ $3 के लगभग जां इस तों हेठां सी। सो तकरीबन 50% इहदे विच वाधा कई थावां दे उत्ते नोट किया गया। इस वेले पेट्रोल दे उत्ते $18.04 ते डीजल दे उत्ते $24.04 जिहड़ा प्रति गैलन जिहड़ा फैडरल दे वल्लों टैक्स लगता है इसे नूं हटाउण दी गल कही जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा कि हालात ठीक होने तक यह टैक्स शायद हटिया ही रहेगा। उन्हों का यह कहना कि भावें यह टैक्स छोटी छोटी जी छोट जापती आ पर महंगाई की मार झल रहे परिवारों ते कारोबारियों के लिए एक वड्डी मदद साबित हो जा रही है। हालातों के नाल नजिठण के लिए अमरीका ने अपने रणनीतिक भंडार के विचों फिलहाल लखां बैरल जिहड़े तेल वो छड्डे ने रिलीज़ किए ने। समुद्री रस्ते ते आ रहे रूसी ते ईरानी तेल दीआं खेपां तों जिहड़ियां पाबंदियां भी हटाईआं ने। इस तों अलावा मध्य पूर्व दे विच तेल दे उत्ते निर्भर देशां दे नाल भी गलबात चल रही है। फैडरल टैक्स दे राहीं सड़कां ते जनतक आवाजाई प्रोजैक्टां दे लई सालाना $23 अरब तों वध दा मालिया इकट्ठा हुंदा वा। सो इहदे नाल अमरीकी भंडार दे उत्ते भी असर पऊगा। सो इस टाइम दे उत्ते इस जंग दे असर प्रतख दिखाई देण लग पए ने भावें उह अमरीका ही क्यों ना होवे। इस दे दरम्यान ट्रंप दे नाल संबंधित एक होर खबर चर्चा का विषय सी कि ट्रंप अपनी डाक्टरी जांच 26 तरीक नूं करवाउण जा रहे ने। सो 26 मई नूं जिहड़ा वॉल्टर रीड नैशनल मिलटरी मैडिकल सेंटर है उहदे विच अपना सालाना चैकअप करवाउण दे लई जाणा ने। नाल कहिंदे ने कि डेंटल चैकअप भी करवाउणगे। अगले महीने इन्हां ने 80 दे हो जाणा। सो सत्ता दे विच परतण तों मगरों इह चौथा उहनां दा जनतक मैडिकल दौरा होवेगा। इस दे दरम्यान होर भी उह हो सकदे ने जिहड़े कि जनतक नहीं कीते जांदे। सो वाइट हाउस ने स्पष्ट कीता कि एक नियमित जांच है कोई किसी किस्म की कोई समस्या उहनां नूं सेहत संबंध विच नहीं है। पिछले साल अप्रैल दे विच होई जांच दे दरम्यान डाक्टरां ने उन्हां नूं पूरी तरह दे नाल फिट भी लानिया सी। हालांकि बाद विच पैरां दी सोजिश दे कारण उन्हां दी जांच दुबारा तो होई सी ते नाड़ियां दे विच खून इकट्ठा होण दी समस्या सामने आई सी। डाक्टरां दे अनुसार 2020 दे मुकाबले ट्रंप दा भार 20 पाउंड घट गया। ट्रंप ने सोमवार दे दिन यह कहा सी कि हाले उह खुद नूं 50 सालां वांग ही तंदरुस्त महसूस कर रहे ने। उह अपनी सेहत दे पक्खों कोई ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਊਣੇ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਾਲੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ

0: इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी स्पेशल ऑफर विच पाओ। 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
1: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार, एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।

ग्रोवर्स, वीड ग्रोवर्स, हांजी 1674, ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो हांजी AM।

0: JBCO Films leke aaye action, emotion ate full on entertainment. Punjabi feature film Shera.
1: 5 saal baad mudiyan Shere. Te mudiyan vi kede haath ch.
2: Starring Parmesh Verma, Sonal Chauhan, Yograj Singh, Manav Vij ate hor vi uge kalakar.
3: Main utthon vi mud ke jithon koi nahi mud ke honga.
0: Written and directed by Savio Sandhu, produced by Anmol Sahni.
2: Hun vekhna na bhullyo 15 mai ton tuhade nedle cinema ghara vich Shera.
4: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ, 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310, डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
5: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हांजी 1674 AM।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपने टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: हाई सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM। रेडियो
1: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
4: और जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवरस्टन विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
5: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
3: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: रेडियो हाँ जी 1674 में दोस्तों इस टाइम तुसी सानू YouTube चैनल दे उत्ते वेखना शुरू हो चुके हो। सो इस टाइम साढ़े नाल जिहड़ी स्क्रीन दे उत्ते शख्सियत ने बतौर पेशे तो डॉक्टर ने पर पिछले समय दे विच इन्हां ने एक किताब लिखी एक नॉवल लिखिया जिन्हें देश दुनिया दे विच धुमा पा दित्तियां। शायद पंजाबी दे विच इदां दा कोई एक्सपैरिमेंट पहला कदी होया होवे जिन्हें कि इन्ने ज़्यादा देश दुनिया दे विचों पंजाबी पढ़न वालियां दे वालों इन्हां नूं प्यार दिता। सो हुण सोहणी गल इह कि इहदे उत्ते एक फिल्म भी बन जा रही है ते होर भी बहुत सारा कुछ इस नावल दे बारे। मेरी मुराद इस टाइम स्क्रीन दे उत्ते डॉक्टर गुरप्रीत धुग्गा जी ने साडे नाल। भाजी सत श्रीकाल।
1: कैलिफोर्निया यूएसए।

0: पांडे जी, क्या तू साला लग पाए हो यार?
1: एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चले आए,
0: और ये तीसरी दोस्त ही है ना?
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
4: हाँ जी।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो वजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना रविंदर गरेवाल, तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਫੁੱਲ ਘਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: रेडियो हाँ जी 1674 AM।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।
1: अखियों से हाय हाय कोली।

0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: गौड़ी सुखमी महला पंजवा सुखमी सुख अमृत प्रभ नाम भत जना कै मन विश्राम सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद
1: आदगुर ए नमै जुगादगुर ए नमै सतगुर ए नमै श्री गुरुदेव ए नमै
0: सतनाम श्री वाहिगुरु अष्टपदि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो
1: सिमरो जस प्रसंबर एक है नाम चबत अगनत अनेक है
0: वेद पुराण सिमर सदाखर कीने राम नाम एक अखर
1: जिनकै जीव सावै ताकि महिमा गनी न आवै
0: कांखी एक है दर्श तुहारो नानक कुन संग मोहे उधारू
1: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ
0: प्रभु कै सिमरन गर्भ नवसै प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै
1: प्रभु कै सिमरन काल पर हरै प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै
0: प्रभु सिमरत काछ बिघन लागै प्रभु कै सिमरन आनंद न जागै
1: प्रभु कै सिमरन भव न व्यापै प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै
0: प्रभु कै सिमरन सार कै संग सर्व निधान नानक हर अंग
1: प्रभु कै सिमरन सिद्ध नौ नित प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
0: प्रभु कै सिमरन जपता पूजा प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा
1: प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभु कै सिमरन दरगाह मानी
0: प्रभु कै सिमरन होय सो भला प्रभु कै सिमरन सो फल फला
1: सि सिमरै जिने आप सिमराय नानक ताकै लागो पाए
0: प्रभु कै सिमरन सब ते ऊंचा प्रभु कै सिमरन उदरे मूचा
1: प्रभु कै सिमरन तिसना बुझै प्रभु कै सिमरन सब के सूझै
0: प्रभु कै सिमरन नाहि जम तरसा प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा
1: प्रभु कै सिमरन की मल जाए अमृत राम रिद महे समाए
0: प्रभु जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना
1: प्रभु को सिमरै सी धनवंते प्रभु को सिमरै सी पतवंते
0: प्रभु को सिमरै सी जन परवान प्रभु को सिमरै सी पुरख प्रधान
1: प्रभु को सिमरै सी बेमुहताजे प्रभु को सिमरै सी सर्व के राजे
0: प्रभु को सिमरै सी सुखवासी प्रभु को सिमरै सदा अविनाशी
1: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगे रवाला
0: प्रभु को सिमरै सी पर उपकारी प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी
1: प्रभु को सिमरै सी मुख सुहावै प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावै
0: प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता
1: प्रभु को सिमरै तिन अंध घनेरे प्रभु को सिमरै बसे हर नेरे
0: संत कृपा ते आनंद न जाग नानक सिमरन पूरै भाग
1: प्रभु कै सिमरन कारज पूरै प्रभु कै सिमरन कभु न जूरै
0: प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सहज समानी
1: प्रभु कै सिमरन निचल आसन प्रभु कै सिमरन कमल विगासन
0: प्रभु कै सिमरन अनहर चुनकार सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार
1: सिमरै से जन जिन कृपा मैया नानक तिन जन सरनी पैया
0: हर सिमरन कर भत प्रगटाए हर सिमरन लागे बेद उपाए
1: हर सिमरन पैसे जति दाते हर सिमरन नीचो कुण जाते
0: हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना
1: हर सिमरन क्यों सगल अकारा हर सिमरन मैं आपने अनकारा
0: कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ इक श्लोक
0: दीन दर दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रसाथ सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदि
1: या मात पिता सतमीत ना भाई मन उहा नाम तेरा संग सहाय
0: जह महा भयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरा चलै
1: जह मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी
0: अनक पुनः चरण करत नीता रह हर को नाम कूट पापर हरै
1: गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे
0: सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हि सुखिया
1: लाख करोड़ी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै
0: अनक माया रंग तिखना बुझावै हर का नाम जपत आगावै
1: जे मार्ग हो जात कीला तै हर नाम संग होत सुहेला
0: ऐसा नाम मन सदा ध्याइयै नानक गुरमुख परमगत पाइयै
1: सूटत नाही को लख बाही नाम जपै तै पार पराही
0: अनक बगंजह आए संघारै हर का नाम तत्काल उधारै
1: अनक जून जन्मै मर जाम नाम जोत पावै विश्राम
0: हौ मैला मल कब हो ना धोवै हर का नाम कूट पाप खोवै
1: ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइयै साधकै संग
0: जे मार्ग के गन जाहे न पूसा हर का नाम उहा संग तोसा
1: जै पैंडे महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा
0: जहां पंथ तेरा को न सुजानू हर का नाम तह नाल पछानू
1: जा महा बयान तप प्रोग्राम तिहार के नाम की तू ऊपर छाम
0: जहां तिरखा मन तुझ आ कर खै तह नानक हर हर अमृत बरख है
1: भगत जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम
0: हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उधरे जन कोट
1: हर जस कत संत दिन रात हर हर औखत साध कुमार
0: हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान
1: मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन कै बिरद विवेक
0: हर का नाम जन को मुक्त जोत हर कै नाम जन को तृप्त भोगत
1: हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न भंग
0: हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई
1: हर का नाम जन को भोजो हर नाम जपत कछ न है बिजो
0: जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा
1: हर हर जन के माल खजीना हर धन जन को आप प्रभ दीना
0: हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी
1: ओत पोत जन हर सराते सुन समाद नाम रसमाते
0: आठ पहर जन हर हर जपै हर का भत प्रगट नी छपै
1: हर की भगत मत पौ करै नानक जन संकेते तरै
0: पार जात एहो हर को नाम काम तिन हर हर गुण गाम
1: सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा
0: नाम की महिमा संत रिदवस है संत प्रताप दुर सब नसै
1: संत का संग उड़ भागी पाई है संत की सेवा नाम दे आई है
0: नाम तुलका छबर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए
1: सुखमनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ दो श्लोक
0: बहुत शास्त्र बहुत सिमरती पेखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदि
1: आप ताव ज्ञान सब ध्यान खर शास्त्र सिमरत वख्यान
0: योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग मन मध्य फिरे ਕਿਰਿਆ
1: ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁ ਜਤਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋ ਮੈਂ ਬਹੁ ਰਤਨਾ
0: ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਾਤੀ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ
1: ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਉ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨੂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ
0: ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਥਮੀ ਫਿਰੈ ਚਰ ਜੀਵੈ ਮਹਾ ਉਦਾਸ ਤਪੀਸਰ ਥੀਵੈ
1: ਅਗਨ ਮਾਏ ਹੋ ਪ੍ਰਾਨ ਕਨਕ ਅਸ ਹੈ ਵੋਰਦਾਨ
0: ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਯਮਤ ਸਾਧਨ
1: ਨਿਮਕ ਨਿਮ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ ਤੋ ਵੀ ਹੋ ਮੈਂ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੈ
0: ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੰਸਰ ਕਛ ਨਾਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤ ਪਾਹੇ
1: ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਛੁਟੈ ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ
0: ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਸਾ ਰਾਤ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ
1: ਦੇਹੀ ਕੋ ਬੋ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ ਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆ ਟਰੈ
0: ਜਲ ਤੋ ਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤ ਸੁਧ ਕਹਾ ਹੋਏ ਕਾਚੀ ਭੀ
1: ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਪਤਤ ਬਹੁ ਮੂਚ
0: ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜੋ ਕਾ ਭਾਉ ਵਿਆਪੈ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਰਾਪੈ
1: ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੰਨੀ ਬੂਜੈ ਕੋਟ ਪਾਵ ਦਰਗੈ ਨੀ ਸਿਜੈ
0: ਛੂਟ ਸਨਾਹੀ ਊਬ ਪਾਇਆਲ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਜਾਲ
1: ਅਵਰ ਕਰ ਤੂ ਸਗਲੀ ਜਮਡਾਨੈ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤਿੰਨੀ ਮਾਨੈ
0: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ
1: ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ
0: ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਮਿਟਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਗਾਵੈ
1: ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾ ਲੋਰੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਮੈਂ ਛੋਰੇ
0: ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਾਰੈ
1: ਜਿਸਨ ਕੋ ਪਵ ਦਸ ਪਿਆਸਾ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ
0: ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾ ਕੈ ਮਿਟੈ ਬਿਮਾਨ
1: ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣਾ ਨੀਚਾ ਸੋ ਉਗਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ
0: ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀਰੀਨਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ
1: ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਟਾਨਾ ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ
0: ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਪੋਂ ਨਿਹਲੇ ਪਾ
1: ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਨਿਥਾਵੇ ਕੋ ਨਾ ਤੇਰਾ ਥਾਉ
0: ਨਿਮਾਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੋ ਦੇ ਬਹੁਦਾਨ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਰ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ
0: ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਣੋ ਆਪੇ ਆਪਣ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ
1: ਉਮਰੀ ਉਸਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਸ ਕੋਏ
0: ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ
1: ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ
0: ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਾਲਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ
1: ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਨੂਰ ਸੰਬਖਾਣੀ
0: ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤਮ ਥਾਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਘਟ ਬਸੈ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਵ ਨਾਮ ਭਗਜਨਾ ਕਹਿ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਤਿੰਨ ਸਲੋਕ
0: ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਇਹ ਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਨ ਕੀ ਆਤਿਸ਼ ਚੀਤ ਰੱਖ ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਨਾਲ ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਮਈਆ ਕੀ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦਸ਼ਟਾਨੀ
0: ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸਵਾਰ ਸਿਗਾਰਿਆ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮਹਿ ਜਿਨੈ ਉਬਾਰਿਆ
1: ਬਾਰ ਬਸਤਾ ਤੁਜੇ ਪਿਆਰੈ ਦੂਤ ਪਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ
0: ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ ਮੁਖ ਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ
1: ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕੁਛੂ ਨਾ ਬੁਝੈ ਬਖਸ਼ ਦੇਹੋ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ
0: ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਾਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਬਸਹਿ ਸੁਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬਨਤਾ ਸੰਘਰਸ ਹੈ
1: ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੇ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਅਮੁਲਾ
0: ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸਭ ਰਸਾ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵਸਾ
1: ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰ ਨੇਤਰਸਨਾ ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗਰਚਨਾ
0: ਐਸੇ ਦੁਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਬਿਆਪੇ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ
1: ਆਦ ਅੰਨ ਜੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਤਿਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰ
0: ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਮ ਨਿਧ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਸੋ ਮੂੜਾ ਮਨ ਹਿਲਾਵੈ
1: ਜੋ ਠਾਕਰ ਸਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਤਾਕੋ ਅੰਧਾ ਜਾਨ ਦੂਰੇ
0: ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗੈ ਮਾਨ ਤਿਸਹਿ ਬਸਾਰੈ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ
1: ਸਦਾ ਸਦਾ ਭੂਲਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਅਪਾਰ
0: ਰਤਨ ਤਿਆ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ
1: ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਤਰ ਕਰਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨ ਹੈ
0: ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸਰਮ ਕਰੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਾਰੈ
1: ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਧਾਰੈ ਧੋਏ ਘਰ ਤੋਂ ਪੀਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏ
0: ਅੰਧ ਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਵਿਕਰਾਲ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ
1: ਦੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ
0: ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ ਛਪ ਸਨਾਹੇ ਕਛ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ
1: ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋ ਸਵਾਨ
0: ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸੁਹਾ ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾਹ
1: ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਵਸੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾ
0: ਸੁਣ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਕਰ ਗਹਿ ਲੇਹੋ ਉੜਨ ਵਿਹਾਵੈ
1: ਕਹਾ ਬੁਜਾਤ ਬੁਜੈ ਡੋਰਾ ਨਿਸਕੀਏ ਤੋ ਸਮਝੇ ਭੋਰਾ
0: ਕਹਾ ਵਿਸ਼ਨ ਪਦ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ ਜਤਨ ਕਰੈ ਤੋ ਪੀ ਸੁਰ ਭੰਗ
1: ਕਹਾ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਕੁਹਾ ਉਸ ਗਵਨ
0: ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ
1: ਸੰਗ ਸਹਾਇ ਸੋ ਆਵੇ ਨਾ ਚੀਤ ਜੋ ਬਹਿ ਰਾਏ ਤਾ ਸੋ ਪੀਤ
0: ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਵਸੈ ਆਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ
1: ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਮਾਨੈ ਮਨੈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਾਲ ਨ ਆਵੈ ਮੂੜੈ ਚੀਤ
0: ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋਹ
1: ਇਹੋ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਓ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ
0: ਠਾਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ
1: ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂ ਗਨੇਰੇ
0: ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾਂਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰਧਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ
0: ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ
1: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਵ ਨਾਮ ਭਗਜਨਾ ਕਹਿ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਚਾਰ ਸਲੋਕ
0: ਦੇਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕਹਿ ਲਾਗੈ ਆਨ ਸੁਆਏ ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨਸੀ ਜਈ ਬਿਨਾਵੈ ਪਤ ਜਾਏ ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਦਸ ਵਸਤੂ ਲੇ ਪਾਛੇ ਪਾਵੈ ਇੱਕ ਬਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖੋਟ ਗਵਾਵੈ
0: ਏਕ ਭੀਨਾ ਦੇ ਦਸ ਭੀਹਿਰ ਲੇ ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੁ ਕਹਾਂ ਕਰੇ
1: ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸੋ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ
0: ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਸਰਬ ਸੂਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਬੂਠਾ
1: ਜਿਸ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ पाया।
0: अगणत साहो अपनी दे रास, खात पीत बरत आनंद उलास।
1: अपनी अमान कछ बहुर साले, अज्ञानी मन रोस करे।
0: अपनी प्रति तापी खूवे, बहुर उसका विश्वास न होवे।
1: जिसकी बस सागे राख है, पप की आज्ञा माने माथ है।
0: उसते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल।
1: अनक पात माया के हे, सर पर होत जान अनेक।
0: बिर की छाया सो रंग लावे, ओ बिन सह ओ मन पछतावे।
1: ज्योति सह सो चालन हार, लपट होत अंध अंधार।
0: बटाऊ स्यों जो लावे नेह, ताको हाथ न आवे के हे।
1: मन हर के नाम की पीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई।
0: मिथ्या तन तन कुटम सुबाया, मिथ्या हो मैं ममता माया।
1: मिथ्या राजु मंतन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल।
0: मिथ्या रथ हस्ती अस वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता।
1: मिथ्या त्रोह मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान।
0: अस्त्र भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण।
1: मिथ्या शरण पर निंदा सुने, मिथ्या हस पर दरुक हिरे।
0: मिथ्या नेत्र पेखत पर तिर रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुसवाद।
1: मिथ्या चिन पर विकार कुतावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे।
0: मिथ्या तन ही पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा।
1: बिन मुझे मिथ्या सब पै, सफल दे नानक हर हर नाम लै।
0: बिरथी साख्त की आर जा, साच बिना कह होवत सूचा।
1: बिरथा नाम बिना तन अंध, मुखावता कह दुर्गंध।
0: बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए, मेघ बिना ज्यों खेती जाए।
1: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो कर प्रते निरार धाम।
0: धन धन ते जन जिह घट बस्यो, हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ।
1: रहत वर कछ अवर कमावत, मानी पीत मुखो गंडलावत।
0: जानन हार प्रभु परवीन, बाहर भेख न काहू पीन।
1: और उपदेश है अपना करै, आवत जावत जन मैं मरै।
0: जिसकै अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरै संसार।
1: जो तुम भाने तिन पर जाता, नानक उंजन चन पराता।
0: करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै, अपना किया आप मानै।
1: आपे आप आप करत नवेरा, किसे दूर जिनावत किसे बुझावत नेरा।
0: उपाव स्यान सगल ते रहत, सब कछ जानै आत्म की रहत।
1: पावै तिसलै लड़ लाए, थान थनंतर रहा समाए।
0: सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरी।
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम, भग जना कै मन विश्राम। अठ पंज सलोक,
0: काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव। नानक प्रशर नागती, कर प्रसाद गुरुदेव। सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी।
1: जय प्रसाद क्षति अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे।
0: जय प्रसाद सुगंध तन लावे, तिसको सिमरत परमगत पावे।
1: जय प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे त्याज सदा मन अंदर।
0: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमर हो तिस रसना।
1: जय प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याय त्यावन जोग।
0: जय प्रसाद पाठ पटम्बर हंडावे, तिसे त्याग तवर लुभावे।
1: जय प्रसाद सुसे सुई जय, मन आठ पहता का जस गवी जय।
0: जय प्रसाद तुझ सब को, मानै मुखता को जस रसन बखानै।
1: जय प्रसाद तेरहता धर्म, मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म।
0: प्रभु जी जप दर गय मान, पावे नानक पथ सेती घर जावे।
1: जय प्रसाद अरो कंचन देही, लिव लाओ तिस नाम स्नेही।
0: जय प्रसाद तेरा उला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत।
1: जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाकै, मन सनी प्रभु ठाकर प्रभु ताकै।
0: जय प्रसाद तुझ को न पहुँचै, मन सास सास सिमरो प्रभु उच्चे।
1: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे, नानक ताकी भगत करे।
0: जय प्रसाद आभूखन पहरी जय, मन तिन सिमरत क्यों आलस की जय।
1: जय प्रसाद असु हस्त असवारी, मन तिस पर को कबु ना बिसारी।
0: जय प्रसाद बाग मिलख तना, राख पुरोहि प्रभु अपने मना।
1: जिन तेरी मन बंत बनाई, उठत बैठत सत सहते आई।
0: सहते आ जो एक अलख है, इहां उहां नानक तेरी रखै।
1: जय प्रसाद करे पुन बहुदान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान।
0: जय प्रसाद तू आचार बिहारी, तिस प्रभु को सास सास चितारी।
1: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभु सिमरो सदा अनूप।
0: जय प्रसाद तेरी नीकी जात, सो प्रभु सिमर सदा दिन रात।
1: जय प्रसाद तेरी पत्र है, गुरु प्रसाद नानक जस कह।
0: जय प्रसाद सुनै करनाद, जय प्रसाद पेखै बिस्माद।
1: जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सो सहजे बसना।
0: जय प्रसाद हस्त कर चल है, जय प्रसाद संपूर्ण फल है।
1: जय प्रसाद परम गत पावे, जय प्रसाद सो सहज समावे।
0: ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो।
1: जय प्रसाद तू पर संसार, तिस पर को मूल न मनो विसार।
0: जय प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तुता को जाप।
1: जय प्रसाद तेरे कारज पूरे, तिसे जान मन सदा हजूर है।
0: जय प्रसाद तू पावे साच, रे मन मेरे तू ता सुराच।
1: जय प्रसाद सब कीत होए, नानक जाप जपै जप सोए।
0: आप जपाई जपै सो नाओ, आप गावे सो हर गुण गाओ।
1: प्रभु कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास।
0: सब सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए।
1: सर्व निधान प्रभु तेरी मैया, आपो कछु ना किन्हु लया।
0: जित जित लावो तित लगै, हर नाथ नानक किन कै कछु न हाथ।
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम, भगत जना कै मन विश्राम। अठ छे श्लोक।
0: ਆਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸੁਮੁਕਤਾ ਹੋਏ ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਸਤ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਖੂਜਲ ਹੋਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਕੋ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੋ ਗਿਆਨ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪੂਜੇ ਪਵਨੇਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੁਬਹੁਤ ਨਵੇਰਾ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਮ ਸਾਧਕ ਸੰਗੇ ਕੂਪਰ ਜਤਨ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨੇ ਕੌਣ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਸਮਾਨੀ

आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देन ना जोर, जोर ना जीवन मरना जोर, जोर ना राज माल मन सोर।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: तब तन कहो गुर

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। परमात्मा को आखिर हमने तलाश लिया, हमने ये जाना कि जिस तरह से मैं एक आत्मा, एक लाइट का एक पॉइंट हूं, उसी तरह से वो परम पिता भी एक लाइट, एक पावर हाउस है। मुझे अपना ही स्वरूप या मैं उसी का ही स्वरूप हूं, लेकिन मैं पुत्र, वो पिता है। आगे और जानते हैं, याद होगा कि पिछली कड़ी पे हमने छोड़ा था कि कहां है वो, कहां रहता है वो परमपिता। तो आइए इस सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: कहां है वो? हमने मिल तो लिए, हम मिल लिए उनसे, ये भी जान लिया कि वो कौन है, पहचानने की कोशिश की, पर वो रहते कहां है, कहां ढूंढे।
1: जब भी हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो स्वाभाविक रीति से नजर कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ, है ना? बस अभी, कभी कहेंगे बस अभी थक गया, बस अभी
0: कहाँ हो तुम?
1: वेयर आर यू नाउ? यू शुड थिंक दैट क्यों हमारी नजर ऊपर जाती है। हमें कोई कुछ भी नहीं पता कि ऊपर क्या है, ना हमें किसी ने बताया कि ऊपर कुछ है, लेकिन स्वाभाविक, दिस इज वाई वी से कि एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द सोल। तो स्वाभाविक रीति से नजर ऊपर जाती है, क्योंकि वही वो घर है जहां से हम आए हैं।
0: कहीं मेरी याद में रचा बसा है।
1: हाँ, क्योंकि हम उस घर से आए ना। सो अ मेमोरी इज देयर। अब किसी के अंदर वो मेमोरी क्लियर होगी और किसी के अंदर वो बिल्कुल फेंट है, लेकिन एक बार हम वहां से आए हैं तो उसकी मेमोरी
0: हमारे साथ है,
1: एब्सोल्युटली इनग्रेड है। ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला ही अब सब देखेगा, उसी को मतलब ऑटोमेटिकली नजर उसकी तरफ जाती है। तो जैसे ये जो दुनिया है, जिसको हम कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड, दिस इज आवर फिजिकल वर्ल्ड, इट इज अ वर्ल्ड ऑफ मैटर, इट इज अ वर्ल्ड ऑफ साइंसेस, इट इज अ वर्ल्ड टाइम एंड स्पेस, यू नो ये लिमिटेड है। एवरीथिंग इज विद इन द पैरामीटर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। ये एक ऐसी दुनिया है जहां आवाज है, जहां मूवमेंट है, हलचल है, जहां रिलेशनशिप्स है, जहां नॉइज है, ये सब कुछ है। वो ये दुनिया है जिसको हम स्थूल वतन कहते हैं, कॉर्पोरियल वर्ल्ड या फिजिकल वर्ल्ड, जहां हम कॉर्प्स में है,
0: ह्यूमन बींग्स
1: है। हाँ, हम बीइंग हैं लेकिन एक ह्यूमन बॉडी में हैं, तो हम कॉर्पोरियल वर्ल्ड या स्थूल वतन में हैं। लेकिन इस शरीर को लेने से पहले भी तो हम कहीं थे ना। यहाँ आकर हमने शरीर धारण किया, लेकिन इस शरीर को लेने से पहले हम कहाँ थे? तो परमात्मा आकर ही हमें उस घर का परिचय देते हैं। जैसे हमें अपना दिया, फिर अपना दिया परमात्मा ने, फिर उस घर का भी दिया कि इस दुनिया से पार, चांद सितारों की भी दुनिया से पार, बियॉन्ड ऑल दिस स्पेस दैट वी कैन सी, देयर इज अनदर वर्ल्ड। अ वर्ल्ड इन द सेंस, इट इज जस्ट अ रीजन एक्चुअली, यू कैन नॉट कॉल इट, इट्स अ वर्ल्ड बट इट्स बेसिकली अ रीजन, इट इज एन एरिया विच इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, जहां सिर्फ प्रकाश है, इट्स जस्ट रेड लाइट, जस्ट गोल्डन रेड लाइट, एंड दैट इज द लैंड.
0: That is where we have.
1: Yes, absolutely.
0: Okay.
1: And that is the land where we all stayed. जहाँ परमात्मा भी निवास करते हैं और जहाँ हर आत्मा भी निवास करती थी इस सृष्टि पर आने से पहले. It is a land of complete silence. Absolute stillness. स्थिरता. क्यों स्थिरता नहीं? क्योंकि वहाँ कोई संकल्प नहीं चलेगा,
0: कोई thought नहीं.
1: ये noise तो नहीं होगी,
0: बॉडी नहीं,
1: ये तो बॉडी नहीं है, लेकिन जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं, या हम अकेले भी हैं, भले हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक नॉइज अंदर चलती है, थॉट्स। लेकिन वो जो धाम है जिसको हम परम धाम कहते हैं, क्योंकि वो परम ऊंचे से ऊंचा धाम है, वो परमात्मा का रहने का भी धाम है, तो परम धाम कहते हैं, वहां कोई आवाज नहीं, संकल्पों की भी आवाज नहीं, इट्स अ थॉटलेस स्टेज, जहां आत्मा इज नॉट डूइंग एनीथिंग,
0: इट्स जस्ट देयर,
1: इट्स जस्ट देयर, अ बीइंग, जिसको हम कहते हैं ना ह्यूमन प्लस बीइंग। यहां आकर हम ह्यूमन डूइंग हो जाते हैं, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, व्हाट एम आई बीइंग, देयर आई एम इन दैट जस्ट कॉन्शियंट बीइंग,
0: आई एम स्टिल देयर,
1: आई एम जस्ट एब्सोल्युटली स्टिल। एक लाइट के अंदर एक लाइट सस्पेंडेड है, जैसे यू कैन सी इट्स लाइक स्टार, ये हम देख रहे हैं ना, इतने सारे स्टार्स, इट्स अ रीजन लाइक वास्ट एक्सपांस, नो टाइम नो स्पेस, एंड उसमें ये स्टार्स सस्पेंडेड है, अपने अपने टाइम पे फिर
0: नीचे उतरते
1: इस सृष्टि पर आते हैं। तो मैं आत्मा उस एब्सोल्यूट स्टिलनेस और एब्सोल्यूट साइलेंस, और इसीलिए हर आत्मा उस शांति को तलाशती है। और जब भी अशांत होते हैं तो हमें वो घर बहुत याद आता है, क्योंकि उस घर में कोई थॉट नहीं था, तो बिल्कुल साइलेंस था, बिल्कुल साइलेंस। एंड वहां परमात्मा भी रहता है, वो भी एक ज्योति बिंदु, एंड मैं आत्मा भी एक ज्योति बिंदु, तो उसको हम सोल वर्ल्ड कहते हैं। ये है फिजिकल वर्ल्ड और वो है सोल वर्ल्ड, आत्माओं का रहने का स्थान। अलग अलग नाम से उसको याद किया गया है, परम धाम, शांति धाम क्योंकि वहां शांति है, मुक्ति धाम क्योंकि हम इस शरीर के कर्म बंधन से मुक्त हैं, निर्वाण धाम वाणी से परे है। तो इन सब अलग अलग नामों से उसको याद किया गया है, वो उस परमात्मा का रहने का स्थान है और हम आत्माएं भी वहीं रहते हैं। अब आप देखो, जब हम वहां थे तो ये स्मृति हमारे अंदर थी, परमात्मा भी एक ज्योति बिंदु, मैं आत्मा भी वैसे, ये मेरा घर, ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ रिकॉर्डेड है।
0: तो हर बार व्हेन आई टेक अनदर बॉडी, यू नो, व्हेन आई मूव आउट फ्रॉम दिस बॉडी एंड टेक अनदर बॉडी, आई इन बिटवीन गो देयर?
1: नहीं, वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे, लेकिन हम बीच में घर नहीं जाते हैं। इट्स लाइक वो घर है और ये हमारा कर्म क्षेत्र है, वर्ल्ड स्टेज, वहां से हम आए हैं कर्म करने के लिए, और काफी समय तक हम इस सृष्टि पर रहकर ही इस कर्म क्षेत्र में पाथ प्ले करते हैं। फिर एक समय आता है जब हम थोड़ी देर के लिए फिर से घर जाते हैं और फिर वापस आकर वो सृष्टि रंगमंच वापस स्टार्ट होता है।
0: Because we've come for a purpose.
1: Yeah, this is like our work. This is our workplace. वो हमारा घर है। तो एक बार आप घर से ऑफिस आते हो तो 8-10 घंटे के लिए आते हो ना। आप ये नहीं करोगे कि हर एक घंटे के बाद घर जाना है बीच में। तो आप 8-10 घंटे के लिए आते हो, शाम को 8 बजे के करीब आप थोड़ी देर के लिए घर जाते हो सिर्फ रेस्ट करने के लिए। लेकिन वो घर जाने से आप रिफ्रेश होके, रेस्ट होके, रिचार्ज होके वापस नेक्स्ट मॉर्निंग 8 बजे ऑफिस पहुंच जाते हो। तो सेम थिंग, ये हमारा वर्क एरिया है, वो हमारा घर है। थोड़ी देर के लिए जाएंगे रेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर ज्यादा समय इस वर्क प्लेस पे बिताते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कर्म करते करते करते हम बहुत थक गए हैं, तो अगर बीच बीच में हम कुछ क्षण निकाल के सिर्फ मन से, बुद्धि से, आत्मा निकल कर नहीं जाएगी, लेकिन मन और बुद्धि से जब उस घर में चले जाते हैं ना और उस पिता के पास चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ बैठे बैठे भी हम वो रिफ्रेशमेंट अनुभव कर सकते हैं। जैसे अब आप बैठो और 2 मिनट के लिए अपने घर को याद करो, जस्ट गो होम फ्रॉम हियर, गो होम एंड बी विद योर फैमिली, यू विल एक्चुअली फील कि आप जाकर वो एक्सपीरियंस करके वापस आ गए। सो इट विल गिव यू दैट फीलिंग
0: हैप्पीनेस, यू नो,
1: दैट्स
0: कंफर्ट लेवल,
1: दैट कंफर्ट, क्योंकि घर मतलब कंफर्ट, घर मतलब प्रोटेक्शन, घर मतलब वो पिता की सिक्योरिटी, तो वो घर मतलब वो प्योरिटी। तो इसलिए हम मेडिटेशन मतलब वो घर जाना, उस पिता के मिलना, उससे बातें करना, फिर वापस आ जाना। कैसे करना? बुद्धि से, वो फिर हम मेडिटेशन में सीखेंगे। तो ये है कि परम धाम, कहाँ हम पिता को याद करें, क्योंकि जब तक हमें उसका घर नहीं पता होगा तब भी याद करना बहुत मुश्किल है कि वो कहाँ पे है, कहाँ हम उससे मिलने जाएं। तो हमने परमात्मा का रूप देखा, उसका नाम देखा कि हम उसको प्यार से शिव बाबा कहते हैं, फिर उसका घर देखा, लैंग्वेज, हम किस भाषा में उससे कम्युनिकेट करें, थॉट्स, संकल्पों के आधार से कम्युनिकेट करते हैं, और संबंध हमारा उसके साथ, जो संबंध बनाना चाहे वो बना सकते हैं, वो भी हम मेडिटेशन में देखेंगे। हम परमात्मा के साथ कोई भी संबंध जोड़ सकते हैं।
0: एक्चुअली यू नो वी कैन, माय गॉड, इफ वी हैव हिम, सी लाइक कितनी राइटर्स ने कितनी बार ये कहेगी कि अगर मुझे भगवान मिल जाए, अगर मुझे खुदा मिल जाए तो मैं ये कहूंगा, मैं ये कहूंगा। सो नाउ लाइक इफ
1: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, और उसके गुणों को तो हम जानते हैं, तो किसी को भी याद करना होता है तो क्या क्या चाहिए? उसका नाम, उसका रूप, उसके गुण, उसका कर्तव्य, आपने कहा था ना एक्ट ऑफ गॉड, कि हम सब यहाँ कर्म क्षेत्र पे हैं, तो उसका रोल क्या है, वो क्या कर रहा है? तो वो अपने परम धाम में बैठा है, वो अपने घर में बैठा है। पूरे हमारे इस ड्रामा के दौरान वो हमारे ड्रामा में इंटरफेयर नहीं करता है. इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल आप फिफ्थ फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है, आपके बच्चे ने ऊपर से नीचे झांक कर देखा कि सब बच्चे खेल रहे हैं, तो कहता है मुझे भी नीचे खेलने जाना है. आप कहते हो नीचे देख लेना, मतलब चोट लगेगी, दर्द होगा, नहीं मुझे नीचे खेलने जाना है, तो आप उसको भेज देते हो. दो तीन घंटा वो बहुत अच्छी तरह से खेलता है, लेकिन फिर उसको थक जाता है, चोट लगने लगती है, चीटिंग भी बहुत होती है, नीचे रोने भी वो लगता है. अब ये सब थोड़ी देर तो चलता रहता है, जब वो बहुत अति में पहुंच जाता है रोने के, कष्ट के,
2: तब आप पहुंच जाते,
1: तब वो एक बार आपकी तरफ देखता है ऊपर सिर्फ, और सिर्फ एक बार बोलता है कि प्लीज मुझे आके यहाँ से ले जाओ. आप दौड़ते हुए नीचे जाएंगे, उसको उठाएंगे और ऊपर ले आएंगे, उसको हील करेंगे, सफाई करेंगे, चुप कराएंगे, सब कुछ करेंगे. नेक्स्ट डे
2: ही डू द सेम,
1: नेक्स्ट डे अगेन ही विल से कि आई वांट टू गो होम. सो दैट इज नो शिव बाबाज रोल इन दिस वर्ल्ड ड्रामा. वो हम नीचे आ जाते हैं खेलने के लिए, कुछ समय हम बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं, इट्स अ गुड गेम, बहुत मजा आता है सारा कुछ करते हुए, लेकिन बहुत समय हो गया ना करते करते, तो बीच में से दुख अशांति ये शुरू हो गई थी, चीटिंग भी शुरू हो गई, एक दूसरे के साथ रोना भी आया, हम बीच बीच में उसकी तरफ देखते भी गए, उसने कहा खेल ले थोड़ी देर और, लेकिन जब हमारी जो दुख थे वो बहुत अति में पहुंच जाते हैं, बिल्कुल हम जैसे कि बहुत जोर से चिल्ला पड़ते हैं कि बस अब हमारे से और सहन नहीं होगा, अब हमें बस मुक्ति चाहिए इससे, दैट इज द टाइम व्हेन ही हैज टू कम डाउन. और वो उस समय पर आ जाता है, नीचे आता है, एक

0: टेंशन है क्या, उसको याद करते हैं प्यार से, वो हमारे एक एक घाव को भर देता है, एक एक चोट को हटा देता है, फिर हमें फिर ठीक करके घर ले जाएगा और फिर थोड़े दिन के बाद हम कहेंगे हमें फिर नीचे आना है। तो कई लोग जैसे कहते हैं ना बस मुक्ति चाहिए या मोक्ष चाहिए, वी डोंट वॉन्ट टू कम इन टू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, बट इट डजेंट हैपन लाइक दैट, क्योंकि द नेचर ऑफ द सोल इज कर्म। यू नो, हम घर जाएंगे लेकिन थोड़ी देर के लिए, उसके बाद क्योंकि जस्ट इन दैट स्टेट ऑफ बीइंग ना, इट्स अ लिटिल बोरिंग एक्चुअली,
1: स्टिल है ना?
0: Yes, still है। हाँ. तो वो उसके जो सारी क्वालिटीज वो उसको यूज नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो वो सिर्फ जब हम बॉडी में आते हैं हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं तो देर इज नो एक्सप्रेशन, देर इज नो एक्सपीरियंस। ना हम अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ना हम कुछ अनुभव कर सकते हैं, वी जस्ट स्टिल। लेकिन शिव बाबा में और हमारे में क्या अंतर है कि हम शरीर लेते हैं, शरीर लेने से धीरे धीरे धीरे धीरे हम अपनी अवेयरनेस को ही खो गए कि मैं कौन हूँ, जो हमने कहा ईगो आ गई, क्योंकि वी फॉरगॉट कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन वो शरीर नहीं लिया, तो वो उस शरीर से उस साकारी दुनिया से न्यारा है, तो उसको कभी वो अपना ओरिजिनल स्वरूप भूला नहीं, और इसलिए उसकी क्वालिटीज में कभी
2: डिप्लीशन नहीं हुआ, कोई कमी नहीं,
0: और हमारे उसमें हो गई क्योंकि हमने शरीर लिया, हम उसकी अवेयरनेस भूल गए अपने, और फिर हम वर्च्यूज की बजाय वाइसेस की तरफ, विकारों की तरफ।
1: नो, बट एक्चुअली दैट एस्पेक्ट इज सो गुड, यू नो दैट वी रियली नीड, वी आर ऑल क्राइंग, वी नीड हीलिंग।
0: एब्सोल्युटली, तो परमात्मा उसी टाइम पर आता है जब हम सब की कलेक्टिव आवाज इतनी ऊंची हो जाती है, हमारे दुख इतने बढ़ जाते हैं, त्राही त्राही मच जाती है, और सच में इस समय त्राही त्राही मची है कि पिता अब बच्चों का दुख नहीं और नहीं देख सकता। तो वही ड्रामा के अनुसार उसका भी रोल है नीचे आने का, क्या करना है, ह्यूमैनिटी और नेचर दोनों को वापस रिस्टोर कर देना है अपनी पीस और प्योरिटी की तरफ। और उसमें क्या करना है, उसको कोई मिरेकल नहीं करना है। लोग कहते हैं भगवान आया तो फिर कोई मिरेकल हो जाए, सारी दुनिया परिवर्तन हो जाए। इफ वी लुक एट द वर्ल्ड ऑन अ ग्लोबल लेवल, व्हाट एवर द केओस इज देयर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द केओस इन द
1: माइंड,
0: इन द सोल। अगर सोल रिस्टोर हो जाए तो वर्ल्ड अपने आप रिस्टोर हो जाएगा। तो गॉड्स रोल is to restore that peace and harmony in the world. कि ये जो सारा chaos हो गया है इसको वापस harmony में लाना है, लेकिन उसके लिए वो करता क्या है, आत्मा की, he restores the peace and purity of the soul. जब soul अपनी original state में आ जाएगी, प्रकृति अपने आप ठीक हो जाएगी,
2: balance
0: अपने आप balance. So that's his role. He comes at this time, heals us, restores us back to that charged battery, nature automatically takes its course.
1: But he said he takes us back also.
0: Yeah, he takes us back, absolutely, because little rest, na? He takes us back home, we rest for a little time, then come back.
2: So, but who goes? Like, whoever is in the dire need, actually, he can't take all of us, you know?
0: Yes.
2: You know, like, how does, actually, it's, you know, it's, if we look at it, you know, right
0: now... Uske liye har ek bachcha hai. Har atma... उसका बच्चा है, भले उसे पहचाने या नहीं पहचाने, लेकिन हर आत्मा इस टाइम जो सृष्टि पर है वो उस परमात्मा शिव बाबा का बच्चा है। तो उसके लिए तो सभी का दुख एक बराबर है, लेकिन वो ये चाहता है कि हर आत्मा पहचान ले और अपने दुखों से मुक्त हो जाए, और वो ही ये प्रयास चला है जो हम हमेशा कहते हैं कि इतने सारे सेंटर्स, 130 कंट्रीज, 8500 सेंटर्स, ये सब सेंटर्स खोलने की क्या आवश्यकता है। दिल्ली शहर में आज हम हैं, 150 सेवा केंद्र है, क्यों, ताकि विद इन 5 to 10 किलोमीटर्स ऑफ वेयर यू आर स्टेइंग यू गेट दैट हीलिंग। आप सेंटर पे आते हैं, आपको शिव बाबा का परिचय मिलता है, अपना मिलता है, एंड योर हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट्स एंड यू आर रेडी, नॉट अबाउट टेकिंग द जर्नी होम, लेकिन व्हाट अबाउट माय लाइफ नाउ। वो तो बाद में जो होना है वो अलग, लेकिन अभी के जीवन क्या, वो जीवन बहुत सुंदर बन जाते हैं।
2: आई कैन रियली अंडरस्टैंड, यू नो, लाइक इट्स, अगर हम शिव बाबा की बात करें, उस परिचय की बात करें, उस एहसास की बात करें, आई कैन फील इट, यू नो। बट आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू, एक मैं सवाल आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज के इस वक्त में सुख, खुशी, प्यार नहीं मिल रहा है, हम त्राही त्राही कर रहे हैं, हम मंदिरों में जा रहे हैं, वहां नहीं कुछ समझ में आ रहा, फिर हम उन रिचुअल्स में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इतना कन्फ्यूजन, उनसे कैसे बाहर निकल सकते हैं? इन द रियल
0: मतलब एक है कि जो

0: लोग समझ के कर रहे हैं, यू नो, पूरी अंडरस्टैंडिंग से, पूरे फेथ के साथ. लेकिन एक है जो सिर्फ डर के मारे कर रहा है, यू नो, कि मेरी नौकरी लग जाए तो उसके लिए ये इतने दिन उपवास, मेरी ये हो जाए तो उसके लिए ये पहनना है, उसके लिए ये हवन करना है, भाई आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, आप इतना दान कर दो. तो ये सारा फियर है. ये तो जैसे ज्ञान नहीं है तो हमें भय में, यू नो, अब हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मतलब सिर्फ कुछ करने से थोड़ी कष्ट दूर हो जाएगा. कष्ट तो मुझ आत्मा की कमजोरी है. अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा. कमजोरी अंदर है, रिचुअल हम बाहर करते हैं, यू नो, हवन है, हवन करना है, योग अग्नि.
1: तुम भगवान से नहीं डरते इसलिए ये हो रहा है आपके साथ. यू नो, जनरली ये कहा जाता भगवान से डरो. So, हम
0: भगवान से डरो इसलिए कह देते हैं क्योंकि अच्छा कर्म करो. यू नो, जो हमने कहा भगवान कहते हैं कि हर जगह है, देख रहा है. लेकिन एक्चुअली जब हमें सच में उसका परिचय मिल जाता है कि वो हमारा, यू नो, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है जो फियर पर बेस्ड होता है, यू नो, दुनिया में भी, कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत डरा के चलते हैं, पर बच्चे के अंदर कभी वो प्यार नहीं, मतलब प्यार होता है लेकिन नो फियर है. तो व्हाट आई फील इज फियर एंड लव कैन नेवर बी टुगेदर. यू नो, देयर इज लव, देयर कैन नेवर बी फियर.
1: एक्चुअली बच्चा फिर हमेशा चाहेगा कि मैं उनकी आंखों में कोशिश करूं, हाँ, करता रहूं.
0: तो फिर वो अपना नेचुरल नहीं होता. वो डर में रहता है, डर की वजह से वो झूठ भी बोल देता है, उल्टा डर की वजह से ज्यादा गलत काम करता है, छुपाने की कोशिश करता है. अब उसी तरह परमात्मा के साथ एक है कि हम डर का रिलेशनशिप बनाकर रखें, पर वो इसलिए क्योंकि हम उसको जानते ही नहीं थे. लेकिन वो पिता है, गुस्सा तो वो कर ही नहीं सकता, वो तो प्यार का सागर है. ही लव्स मी, ही इज द ओनली वन हु लव्स मी अनकंडीशनली, यू नो, अनकंडीशनल लव. जो हम दुनिया में
1: कैन नेवर बी एंग्री, वंडरफुल. गुस्सा तो भगवान आपसे नाराज है, मतलब
0: भगवान कभी नाराज नहीं हो सकता.
1: See, लेकिन लुक एट इट, आई थिंक आई हैव हर्ड इट सो मेनी टाइम्स, यू नो, लाइक
0: भगवान नाराज नहीं हो सकता. See, that is the beauty. उसके अंदर कोई विकार नहीं है, because he is ever pure. तो गुस्सा कैसे आएगा उसको? ये हमने जो बना दिए बहुत सारे, परमात्मा को गुस्सा आया तो विनाश हो गया, ये, you know, ये सारी चीजें. परमात्मा को अगर गुस्सा आ गया
1: तो परमात्मा कैसे रहा? Because he is telling us not to be angry.
0: Yeah, he is the ocean of peace. See, he cannot have anger. वो पिता है, वो रहम दिल है, वो कल्याणकारी है, वो क्षमा का सागर है,
1: वो लविंग है, वो प्यार. हाँ,
0: सबसे पहली चीज तो प्यार है. इतना प्यार देता है, मतलब इवन द टर्म अनकंडीशनल लव, विच आई यूज टू हियर पहले, यू नो, अनकंडीशनल लव, एंड आई फील नो ह्यूमन बींग कैन गिव अनकंडीशनल लव. इट्स नॉट पॉसिबल. अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, नो ह्यूमन बींग कैन डू इट. आप कितना भी ट्राई कर लो, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हो जाती है, और जब वो नहीं मीट होती तो हर्ट होता है. वो हर्ट नहीं होता. वो हर्ट नहीं होता, वो बहुत प्यार देता है. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कहें फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, यू नो. जहाँ पेरेंट बहुत प्यार देता है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि और भी ज्यादा सही दिशा में चलने का दिल करता है, क्योंकि वो इतना प्यार देता है. तो आपको लगता है कि वो जो आपको शिक्षा दे रहा है, आप उसकी हर शिक्षा को बस फॉलो करते रहो, क्योंकि आपको ये पता है कि वो हर चीज आपके फायदे के लिए है. सो ही इज अ वेरी वेरी वेरी लविंग
1: ना. जो हमने बात उस वक्त की थी, आंख बंद करके विश्वास करने वाली बात,
0: आंख बंद करके, क्योंकि ये पता है ना कौन बोल रहा है. कौन बोल रहा है तो निश्चय है. इसको ब्लाइंड फेथ नहीं कहेंगे. कई लोग कहते हैं ब्लाइंड फेथ है. नहीं, जब अगर हमें एक इंसान पर भी निश्चय हो जाए, सपोज मुझे निश्चय है कि आप हमेशा मेरे अच्छे के लिए ही बोलोगे, तो मैं क्वेश्चन नहीं करूंगी आपको.
1: नहीं, पर हम अपने पेरेंट को क्वेश्चन कब करते हैं? आई डोंट नो एनी वन एनी चाइल्ड क्वेश्चनिंग.
0: नहीं, बट अभी क्या होता है, कई बार चिल्ड्रन हैव दिस थिंग विद देयर पेरेंट्स कि नहीं, ये पता नहीं, मैं इनका अपना इसमें रीजन है. इनका ये मेरे पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे हैं, यू नो, इसमें मेरा फायदा नहीं है, मेरा फायदा डॉक्टर बनने में है, ये चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं. सो ये सब लिमिटेशंस, अ पेरेंट एक्चुअली अच्छा ही सोचता है. इवन मनुष्य आत्मा कभी बच्चे के लिए गलत नहीं सोचते, लेकिन ईगो की वजह से अपनी थिंकिंग, यू नो, अपने लिमिटेड बैरियर्स हैं. लेकिन वो तो साकारी नहीं है ना. वो साकारी लिमिटेशंस में बाउंडेड नहीं है. वो हमारी बड़ी पिक्चर देख सकता है. ही इज नॉट बाउंडेड बाय टाइम एंड स्पेस.
1: एंड अगेन, जो हम कर्म कर रहे हैं उसका जो लॉ ऑफ नेचर है या लॉ ऑफ कार्मिक डेथ,
0: वो हमें रिटर्न
1: तो करना ही है.
0: लेकिन परमात्मा हमें सही कर्म करना सिखा देता है ना. जैसे आप माँ हैं तो आप अपने बच्चे को सही कर्म सिखाएंगे. अगर वो आपके कहे अनुसार चलते गए तो उसका रिटर्न क्या होगा, सही का सही है, तो रॉन्ग होने की कोई मार्जिन नहीं है. तो सबसे पहली चीज तो हम कहेंगे परमात्मा से डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना,
1: बिकॉज
0: जस्ट टू ब्यूटिफुल, इज जस्ट टू ब्यूटिफुल, डोंट हैव टू गेट स्केर्ड ऑफ हिम, ही लव्स यू and you need to love him back. And that's the relationship. Relationship with God is exchange of that purest love.
1: I love him, but then how do I tell him, you know? Like, how do I, you know, like now you, see, अभी तक आई थिंक हम जितने भी हम बातचीत करते आ रहे हैं, हमने खुद को भी पहचान लिया और you know, like we were not even aware, but the moment the picture is clear, actually I can visualize, we can all visualize, you know, lot of confusions cleared. Even if we had taken it as an assumption.
0: Yes.
1: Shiv Baba, क्योंकि जब तक हम experience नहीं करेंगे हम नहीं चलिए नहीं मानते. Assumption पे ही हमने माना कि शिव बाबा है और उसके बाद हमने ये पूरा logic दे दे के हमारे सामने एक picture create हो गई, which is I think so beautiful, so pure. Now, how do I get that love?
0: वो जो हम याद की यात्रा शुरू करेंगे ना, विच वी विल सी कि वो कैसे उसको याद करना है. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस रीगेन कर लीजिए कि वो मेरा पिता है, मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो मुझसे नाराज नहीं है, मुझे उसको खुश करने के लिए कुछ नहीं करना है. जो बहुत सारे हमने विस्तार किया है ना कि भगवान को खुश करने के लिए यू नो
1: इसी तरह से करो ये करो,
0: वो बाह्य चीजों से हमारे वैसे भी नहीं खुश होगा. वो क्या चाहता है हमसे, वो हमसे ये रिचुअल्स नहीं चाहता है, वो चाहता है हम जागे, हम ये जो अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं हम जागे और अपनी शक्ति को फिर से पहचाने. ये फिजिकल जो है ही फिजिकल नहीं है, जो फिजिकल है ही नहीं, तो वो हमारी फिजिकल चीजों से क्या खुश होगा. क्या उसको मैं, उसको तो कुछ मिलता ही नहीं है उसमें से. सो दैट कैन नॉट प्लीज हिम एट ऑल. सो स्टॉप फियरिंग एंड स्टॉप डूइंग एनीथिंग इन द नेम ऑफ फियर ऑफ गॉड. यू नो इवन इफ समबडी इज गाइडिंग यू टूवर्ड्स दोज थिंग्स, यूज योर इंटेलेक्ट, सोच कर कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं. बिकॉज इस समय जब हम भय में होते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे भय को एक्सप्लोइट करते हैं. यू नो अभी अगर आपको, जैसे आप किसी नए शहर में चले जाओ और कोई आपको देखे कि आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता, तो आपको एक्सप्लोइट करने के लिए 10 लोग मिल जाएंगे. इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं कि हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो बस अज्ञान में ठोकरे खाते हैं, तो उसको एक्सप्लोइट करने के लिए भी बहुत कुछ है. तो वो फिर यू नो देन इट बिकम्स लाइक मनी मेकिंग एंड सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सप्लोइटेशन. तो उस एक्सप्लोइटेशन से हमें अपने आप को बचाना है और फेथ से चलना है. बिल्कुल.
1: तो ये कुछ बहुत सुंदर एक्चुअली कि कुछ बातें इतनी क्लियर है कि भगवान से हम डर नहीं सकते क्योंकि वो तो परम पिता है.
0: डरेंगे तो उल्टा अच्छा रिलेशन नहीं बनेगा.
1: हाँ, क्योंकि हमने एक रिश्ता बनाना है. रिश्ता बनाना है क्या, रिश्ता बना हुआ है, उस रिश्ते को याद करना है. एक्चुअली इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति. कितना सुंदर है हमारे पिता शिव बाबा. अगर हम मान भी लें, अज्यूम करते हैं कि हमने उन्हें माना, वो हमारे पिता है, परम पिता जिन्हें हम तलाश रहे थे. उनका परिचय इतना खूबसूरत है, कहीं ना कहीं दिल को तसल्ली है. मैं अपने आप कह सकती हूँ, हो सकता है आपके पास अभी भी कोई सवाल हो, कोई ऐसी बात हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई. आपका स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल द्वारा या फोन द्वारा संपर्क कर सकते हैं.
2: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निःशुल्क सिखाया जाता है. ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है. भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं. राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें.
1: रास्ते खुल चुके हैं, शिव बाबा अपना निमंत्रण दे चुके हैं. पहला कदम हमें बढ़ाना होगा. कैसे करेंगे हम उन्हें याद, अगली कड़ी में जानने की कोशिश करेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में. अब दीजिए इजाजत. नमस्कार.

जिस प्रकार ख्याल ठुमरी रुबत तराना इत्यादि आप सुनते हैं, वैसा ही ये एक और प्रकार है। इसे चतुरंग कहते हैं। चार अंगों का इसमें समावेश है। राग मिश्र खमाज का आधार लिया है।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच,
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर स्टंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन तुहाडे मोडे नाल मोडा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
2: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
6: हां जी रेडियो

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: बात करके तो तसल्ली कर रहे हैं कि कहीं कोई सांस बाकी तो नहीं रही।
1: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
2: ਚਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुन धमाल। नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
3: हाय हेलो, दिस इज अली असगर हियर ऑन रेडियो हाजी 1674 AM। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए, लेकिन

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com।